0: सतगुरु जी का कोटान कोटान शुकराना है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने अपार बख्शिश की है। सतगुरु जी ने अपनी कीर्तन की सेवा ली है। सतगुरु जी के चरणा चरदास है। सतगुरु जी आप सबना की हाजिरी दर प्रवान करन, सबना अनुदरों करो, गुरसिखी की दात, नाम की दात, सेवा की दात बख्श के निवाजन जी। भुल चुक दिखी मां जी, आओ अगला प्रोग्राम श्रवण करिए। असीस बख्शिश करो, फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संग जी, शाम दे सजे हुए दीवान विच आप संगता नूं कीर्तन और श्रवण करवा रहे सन। सत्कारयोग रागी भाई भिंदर सिंह जी, हजूरी रागी श्री दरबार साहब श्री अमृतसर साहब वाले समूह जथेदार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाव सब संगतां नाम सिमरन नाल जुड़दे हां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव न बिरथी जासी अनद करे तेरे दासा जप।

ज्यो ज्यो चले चुभय दुख पाव है, जम काल सहे सिर डंडा है, हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पवखंडा है, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख

भाव यह संसार विकार संशय में है। तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे एह रस अखत कथा तिन जानी। जाको आए सोए बिहाजो हर गुरते मन है बसेरा। निज कर महल पाओ सुख सहजे

नमः सतगुरु ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी सिमरहो सिमर सिमर सुख पावो काल कलेह तन माहि मिटावो सिमरहो जास विषम पर एकै नाम जपत अगंत अनेकै वेद पुराण सिमरत सो दाख्य हर की

नाम जपत आगावे जेह मार्ग इह जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइय नान गुरमुख परम गत पाइय छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराही।

करतूत पशु की मांस जात लोग प्रचारा करें दिन रात बाहर पे खंतर मल माया सब सुनाहे काश करे छिपाया

ममता माया मिथ्या राज जोबन धनमाल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असव बहतरा मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरण ना

जस रसन बखाने जेह प्रसाद तिर रहता धर्म मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावे नानक पत सेती घर जावे जेह प्रसाद अरो कंचन देही लेव लाभ तिस राम स्नेही

विसारी देह प्रसाद बांग मिलख तना राग प्रोय प्रभ अपने मन जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत साधत सेहत आई।

रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊँचते ऊँचे, साध की शोभा मूचते मूचे। साध की शोभा साध बने आई नानक, साध प्रभु भेद न पाई। सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख है एक सिन कोय। नानक कहे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल मह कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कव सोख।

ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी काम तर पार नान, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ काम करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता।

दात्मन कोर कई कोट पर दर्भ को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रम वाह, कई कोट पर देश प्रवाह है। जित जित लाभ हो तित तित लगना नान करते की जान है, करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर पे पाए, कई कोट पाथर वृक्ष बजाए, कई कोट पवन पानी वह संतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखेत्र, कई कोट देव दान इंद्र सिर शत्र।

छूटै। सहस खटे लाख कोठ धावे, त्रिपत नावे, माया पाछे पावे, तनक भोग भिख्या के करे, नह त्रिपतावे, खाप खाप मरे, बिना संतोख नहीं को राजे। सुपन मनोरथ वृथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख हो बड़ भाग।

सरस्वती संत सांगे अंतर प्रवृठा नाम प्रभु काला गामिता सगल समिग्री एक कर्माय अनुग्रह अंगना न दृष्टा हे नाव निध अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका

तरी जे बन्ना पुरियां पार सहस सियाणप लख हे तक न चल नाल किब सचियारा होई है किब कूड़ा तुट्टे पाल हुक्म रजाई चलना।

सच्चा मन सोए सचखंड बसे निरंकार कर कर वेख नदर निहाल तिथे खंड मंडल परपण जे को कथ अंत नंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुकम थिवै थिवकार वेख विकसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अरण मत वेद अथियार पाओ खला अगंत बताओ भंडा पाओ मृत ढाल कड़िया शब्द सची टकसाल जिनको नदर करम दिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेल सकल जगत।

काल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीग है, नरसरी है, नरलम है, असम है, अगम है, अजम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, कर्म है, परम है, अजीत है, भीत है, अबा है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयाद छंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमो देव देवे अभेकी अभेवे नमो काल काले नमो सर्वाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वभौणे अनंगी अनाथ नरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान भाने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो भान भाने नमो बाद बाधे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकंग मिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्तरमाने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता पेखी अपरमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोगे स्वर्ग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवस्तरमे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो पुपुपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो संसनाने नमो मंत्र नमो सर्वजंत्र नमो नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र यंत्र नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्र सदा सचदानंद सर्व प्रणासी अनुप्य रूपे समस्त निवासी सदा सतदा बदता विरुद्धकर्ता अदो उर्दर्दंग अगंग ओघर्ता प्रंग प्रंग परमेश्वर प्रोष बालंग सदा सर्वदा से दाता दयालंग अशेदीय भेदिया नामंग अकामंग समस्त पराजी समस्तामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले है पीत है पे है प्रभु है जू है देस है भेस है भुजंग प्रयाद छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वाने समस्ति निधाने नमस्तवंग नरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग गंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग काले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे नमो राज राजे नमो साह साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृसंग नमो सर्वकृसंग नमो सर्वरंगे दर्भंगी अरंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अगिजे अभिजय समस्तंग प्रसिज्जय कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी चरपट शांत व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग तरानंग सर्वं भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल शांत त्वा प्रसाद आदुर्बनाद मूर्त अजौन पुरखापार सर्वान्ध्रमान देव भेवादुधार सर्वपालक सर्वकालक सर्वगोपन काल

अपंग है, अनंग है, अपेक है, आलेख है, परम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजाय है, अभय है, अभूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अपगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, नचंत है, सुनिंत है, अलिख है, अधिक है, आलेख है, अपेक है, अटाह है, अगा है, असंभ है, अगम्भ है, अनगिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट शांत व प्रसाद, सर्वं हन्ता, सर्वं गन्ता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं तराणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, सावल शान्त्वा प्रसाद, नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगा स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे द्रभंगी द्रगामे द्रभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न सत्तर न मित्र न तात न मात न जात न पात इंद्र साकं श्री कह मितो अमी कह सदैवं प्रवाह है अजाय है अजा है भगवती शांत देवता प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है मेसुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के सुनल चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज ग्रहंद है करीमल कमाल है के सुनल जमाल है गरीबल खराज है गरीबल निवाज है हरीफल शिकन है रासल्फिकन है कलंगं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गरीम है रजय ग्रहीम है समस्तुल सिवाह है के साहिब ग्राह है के नरकं प्रणास है भैसुल वास है के सर्वुल गवन है मैं सुलरवान है तमाबुल तमीज है समस्तुल अदीश है आदेशुल लेख समस्तुल अदीश है परंग परमीश है समस्तुल अदीश है आदेशुल लेख है मैं सुलपेख है जमीनुल जवा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल के जुरत जमाल के अचलंग प्रकाश है के मित्तो सुभाष है के आज स्वरूप के मित्तो विभूत है के मित्व प्रसाह के आत्म प्रवाह के अचलंग अनंग के मित्व अभंग मदभार छंद प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम हर भर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मन मन सनाम हर नर अखंड भर नर अमंड अनुभव अनास अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जलथल मुदाम अंश अंग आसन अभंग उपमा अपार गति मित उदार जलथल अमंड दिशुषण जलथल महंद

दुष्ट अरिष्ट चरे तत काला कृपा दुष्ट जायने हर हो ताके ताप तनक में हर हो रे दुष्ट कर्मो सब वही दुष्ट शा शब सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल वास्ते ताहे उबारा जिंदर नाम ते हारो कहा धार दुष्ट दोग ते रहा खड़केत मैं सरन ते हारी आ बहा दे ले उबारी सर्व ठावर मोहो सहाई दुष्ट दोग ते ले हो बचाई कृपा करी हम भर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता गलभिक सकल देखो हरता दुष्ट दुखिन को शय करता श्री अस्तुजा पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ दगाला मन बाचत बल पावै सोई दुखना तसे ब्यावद कोई अड़िल सुने गुंग जो जाहे सुरसना पावई सुने मूर्छित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भव निगना नर घेरा है हो जो जाकी एक बार चापई कहो गह चापई संबत सत्रह सहस प्रणजय अर्द सहसुन कह जय बहादुर सुधी अष्टमी रवारा तीर सतुर ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जबते तुमरे दबते गऊ आंख तरे रहिया निवराम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक नामान्य सिमरत।

जाए ना जाए सहसा कहते संयम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मिलीन है कहते संयम तो था जाए मन तो अव शब्द लागो हर से रह हो चितलाए कहे नान गुर प्रसादी सहज उपजाए सहसा ए बजाए जियो मैले बारो निर्मल जियो था मैले तेने जन्म जुआ हारिया ए तना बड़ा रोग लगा मरण मनो वे सारिया वेदा मैं नाम तम सो सुने ना ही फिरे ज्यो बेतालिया कहे नानक जन सच दे तजिया कूड़े लागे तेने जन्म जुआ हारिया जियो निर्मल बारो था निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुँचे ना ही मनसा सा समाणी जन्म रतन जने खटिया भले से बन जा रे कहे नानक जन्म निर्मल सदा रह है गुरु नाले जेको सिख गुरु सेती सन्मुख होवे होवे ता सन्मुख से कोई जियो हो रहा है गुरु नाले गुर के चरण हृदय ते आय अंतर आत्मै संभाले आप छट सदा रह पर गुरबिन अवर न जाने कोय कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जेको गुर ते वेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे पावे मुक्त न होर था कोई पिछो विवेकिया जाए अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हाओ गावो सच्ची बाणी बाणी था गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिनको नदर गर्म हो वह हृदय तना समाणी पीवो अमृत सदा रह हो हर रंग जप्यो सारंग बाणी कहे नानक सदा गावो ये सच्ची बाणी सतगुरु बिना और कची है बाणी बाणी तो कची सतगुरु बाजो होर कची बाणी कहते कच्चे सुनते कच्चे कची आख बखाणी हर अरित करे रसना कहा कछु ना जानी चित जन का हिर लया बाया बोलन बैरवाणी कहे नानक सतगुरु बाजो होर कची बाणी मुर्गा शब्द रतन है हीरे जत जड़ाओ शब्द से ती मन मिलिया सचे लाया भाओ आपे हीरा रतन आपे सुनदे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जत जड़ाओ शिव शब्द आव पाए गए करता पे हुक्म रताए आ वेख गुरमुख से बजाए थोड़ा बंधन होवे मुक्त शब्द मन न वसाए गुरमुख जनु आप करे सो होवे एक स्यों लिबलाए कहे नानक आप करता पे हुक्म बुझाए सेमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार न जानी गुरु बाजो ततै सार न जानी तई गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहानी गुरु कृपा दे से जन जागे जिन्ना हर मन वसया बोले अमृत बाणी कहे नानक सूत तत पाए जिनों अंदर हर लागे जागत रहन विहानी माता

दुई कुदरत साजे कर असन ठुचा दाता करता आप तुम तुस देव करे पसाओ तू जानो सबसे दिल से जिंद को आओ कर असन ठुचा कर असन ठुचा।

चार पंक्तियां का शब्द है सत्संग। एक एक पंक्ति च गूढ़ा सिद्धांत रखे महाराज जी। हुण देखो वचन करते हैं कहते इत्थे तक सीमित नहीं रहना गुरमुखों,

तत् सब प्रगट हो गए। तत्तां दे विच सत्ता आ गई, चेतन सत्ता आ गई, सब कुछ आ गया। सिर्फ उहदे इक वाक नाल कलगीधर जी ने वचन कीते ने, प्रथमै ओंकार पुन कहा सो धुन पूर जगत मुरहा। जदों महाराज जी ने किया ना एको कवाओ, एक एक वचन कीता, एक हुक्म कीता, एक शब्द उचारण कीता, कलगीधर जी कहिंदे उह शब्द ओंकार सी, आखो सतनाम श्री वाहे। और महाराज जी दे इस वचन की पुष्टि महाराज जी अपनी बाणी च गुरु नानक देव साहब जी भी करते, ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल जुग पए, ओंकार वेद निर्मय। सो महाराज जी ने ओंकार शब्द के उच्चारण तो ये सारी प्रकृति का होंद चान लिखा। महाराज जी कहते वाहिगुरु ने जो प्रकृति बनाई ना, पहला पांच तत्व बनाए भाई, फिर पंजा तत्तां तो विस्थारा सारा विस्थार किया, फिर विच धातु पंच आप पावे, पंजा तत्तां च पंज धातुआं भी आ पईआं, काम क्रोध लोभ मोह हंकार आदि पंज तन मात्रा भी कहिंदे आ इहनां नूं। क्यों पईआं? क्योंकि सृष्टि दे चलदे रहण लई इह लाजमी ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिवें शरीर दे चलण लई श्वास लाजमी ने, उदां प्रकृति दे चलण लई विकार लाजमी ने। जे विकार खत्म हो गए प्रकृति चों, प्रकृति दी ग्रोथ बंद हो जाएगी। ते जदों किसे वस्तु दी ग्रोथ बंद होंदी है, हौली हौली वो खत्म हो जाती है। इस करके पंज विकार इन्ने लाजमी है, सारी प्रकृति लिकले इंसाना लई नहीं, सारी प्रकृति दे लई, के इन्हां तो बिना विस्थारा ही नहीं हुंदा। आखो सतनाम श्री वाहे। इन्हां तो बिना अगे नहीं चलती लड़ी सृष्टि दी, बच्चियां दी।

उठ गई सभा मलेश की, कर कूड़ा पर सार, डंका बाजे फतेह का, लंकार अवतार, नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण गुरु अवतार, जगमग ज्योत बराज जी अबचल नगर बाजार, श्री सचखंड के दरबार, जगमग ज्योत बराज जी अबचल नगर बाजार, श्री सचखंड के दरबार, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, श्लोक महला पंजवां, तेरा कीता जातो ना मैनू जोग कितो, मैं निर्गुण यारे को गुण आपे तरस पियो, तरस पिया मैं रहमत हो सतगुर सज्जन मिले, तरस पिया मैं रहमत हो सतगुर सज्जन मिले, नानक नाम मिले ता तन मन थीवे हरे, नानक नाम मिले ता जी तन मन थीवे हरे, छोट महला पंजवां, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तुम ऐसा, माधो हम ऐसे तुम ऐसा, हम पापी तुम पाप खंड, नीको खाट देसा, नीको ठाकर देसा रहाओ, हम पापी तुम पाप खंड, नीको ठाकर देसा रहाओ, तुम सब साजे साज नवाजे जियो पिंड दे प्राण, तुम सब साजे साज नवाजे जियो पिंड दे प्राण, जियो पिंड दे प्राण, निर्गुण यारे गुण ने कोई तुम दान दियो मेहरबान, निर्गुण यारे गुण ने तुम दान दियो मेहरबान, तुम करो भला हम भला न जान, तुम सदा सदा दयाला, तुम करो भला हम भला न जान, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख दाते, तुम राखो अपने बाला, तुम सुखदाई पुरख दाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान जी जन सब जाचे, तुम निदान अटल सुल्तान जी जन सब जाचे, कौन नानक हमेर खाला राख संतन के पाछ, कौन नानक हमे हवाला राख संतन के पाछ, चाचरी शान गोविंद दे।

0: धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सा, तू ही निरंकार, तू सदा सलामत निरंकार, तू ठाकुर उच्च भगवान है। नानक की प्रा बेनती अपनी भगती लाए, धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सा, तू ही निरंकार है, तू सदा सलामत निरंकार, तू ठाकुर उच्च भगवान है। नानक की प्रा बेनती अपनी भगती लाए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज, धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज, कोट कोट प्रणाम, पुल चक माफ, तेरे चरण कमला पास, बहुत बहुत धनबाद। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने स्वरदा पाए, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल,
1: सतनाम।

दियो। मानतन वस्या सच्चा सोई बिखड़ा था न दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन होए को स्वामी आहे आदियो। जो किच कराए सो आपे आपे बुद्ध सियाण किचु न जापे अपने।

सुखेतने पिछाड़े माया मोह माया महे जया जन काले माया मोह स्मरे बिचाए अंतर कप जो पावने गुरमुख भगत जाया पकराए तन दत्ता सह सबाए बाणी वजे शब्द बजाए गुरु

त्याग बेनती करे लहो प्रभु लड़लाए जोहर जोहर कंत मलाया जोहर कंत मलाया से विछड़कते न जाए प्रभ हिंदू जाको नहीं नानक हसन आए अस

संत सहाय राम कै कर कृपा दिया मिलाए से स्वामी सर्व सुख हन दुख नहीं जाए इच पुण्य बड़ पगनी वर पाया हर राय मिल सहिया मंगल गावी गीत गोविंद लाए अजिहा अवर न दिसे कोई दूजा लवे न लाए हलत पलत सुवार

सच मन निर्मलो सच निवास करे सच सोए सच्ची वाणी जोग चारे जपे साबत सचा अपे अपे कर्म होवे सच कर्म होवे सत्संग मिलाए हर गुण गावे सुथाए राओ जनोए देवा तुझे पाए आदस आदस नह चके लाए बन बुझे तन मन पीका होवे बन आवे जो पांडा होए दे पांडे टिके न कोए गुर शब्द ही मन नाम निवास नानक सच पांड नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गोरी गोरी महला तीजा एक गाव तुराए मन साधना पाए होमे बिच गाए बिता जाए गाव गावे जन नाम प्यार सच्ची बाणी शब्द विचार शब्द बाजार अपना अपना पे रखा उदा उदार भगत करे मुल्क आप जो नाए नच नच करते दुख पाए नचे तपे पत होए पत ना होए शब्द मरे भगत पावे जन सोए भगत बछल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचुआ पतोए मेरा प्रभ सच्चा साब बह जाने नानक बख्शे नाम पछाने प्रसाद हर मसे मने आई राहु गंगा करनी कार तो आवे इसमें की सोजी पावे मन की मत न गंगक सारा कुछ अंत मार्ग बन हारा मन असाध साधे जन होए च चैतन मल होए गुरमुख ए मन ला सुवार हमें बिच तजे बकार जोत रखन मैल मिलाए कदन मिसे शब्द समाए अपनी करा अपे ही गौरी गौरी महला तीजा हमने सब जग गौर दूजे पाए परम फुलाना बो चिंता चुके आप चरना चंदा करते अंधन बेहाना चुके राम राम मेरे पाए गुरमुख रसना हर संसाई शब्द पछाता कृपा करता पहचाब कर्म पछाता सुहे जन सुखे को शब्द पिंगाए ताप रखे ठाक रहाए नाम रहन यद्य गुर के पाए गुर के पते हर वसे मन आए राम नाम कृत्या सब सुख शांत शरीर पर वसे न लगे जम पीर आपे सहज आप वीर नानक सेव सदा हर गुणी के हीर को जी द्वारी महला तीजा जन एक मन चुटा तिन हर मन विसाए गुण मुक्ति हर नाम समाए गुण जिन्ना पोते जिन्ना पोते पंस ज्ञान बिचारी जिन्ना पोते पंस नहने मारी नानक नाम नाम पोते तिन कहो बिहारी कौरी द्वारी महला तीजा तू कत क्यों कथिया जाए तू शब्द मार न मन मह समाए तेरे गुण ਸਮਾਨ ਤੇਰੀ ਕਰਤਾ ਸਭ ਸਮਾਨ।
Yeah.